0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसे संगठन को प्रस्तुत

कर रहे हैं जो परेशान युवाओं एवं परिवारों का साथ देता है। जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बच्चे का आगमन उनके जीवन में नई उमंग, नई आशा और अनगिनत सपने लेकर आता है। वे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं और उसके सुखद जीवन के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन माता पिता बनने के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है। यदि बच्चा संस्कारी, मेहनती और होनहार बनता है तो माता पिता अपने सभी कष्ट एवं संघर्ष भूल जाते हैं। उसकी प्रत्येक उपलब्धि उन्हें गर्व एवं संतोष से भर देता है। किंतु यदि बच्चा बुरी संगति, नशे, अनुशासनहीनता या अन्य गलत आदतों के जाल में फंसने लगे तो वही माता पिता गहरे दुख, चिंता और निराशा से घिर जाते हैं। वे स्वयं को असहाय महसूस करते हैं और अपने बच्चे को सही मार्ग पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यीशु की शिष्य धर्म बहनों ने माताओं के लिए एक प्रार्थना दल शुरू किया है ताकि वे अपने बच्चों की मदद कर सकें। यह प्रार्थना दल अब एक ऐसा संगठन बन चुका है जो नशे की लत से जूझ रहे युवाओं की मदद करता है। रियो ग्रांडे का औद्योगिक शहर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है, जहां पूरे अर्जेंटीना से लोग नौकरी के अवसर एवं बेहतर आर्थिक स्थिति की तलाश में खींचे चले आते हैं। हालांकि अत्यधिक ठंड, हवा एवं अकेलापन के कारण लोग अक्सर अवसाद, उदासी एवं नशेपन के शिकार होते हैं। ऐसे ही माहौल में येसु के शिष्य धर्म बहनों ने अपना मिशन शुरू किया है। वे पहली बार 2012 में इस द्वीप पर पहुंची। केंद्र में सबसे कमजोर लोगों, खासकर अकेलापन, अवसाद और नशे की लत से परेशान लोगों की मदद की जाती है। मदर विकी याद करते हुए कहती हैं, हमें यह महसूस हुआ कि हमारे आध्यात्मिक मिशन को समय की मांग के अनुरूप बदलना होगा ताकि उन गांवों पर मरहम लगाया जा सके। संत मोनिका संगठन की शुरुआत उन माताओं के लिए एक स्वयं सहायता दल के रूप में हुई है जिनके बच्चे नशे की लत में फंसे हुए हैं। माताएं बहुत अधिक दर्द लेकर प्रेरित केंद्र आती थीं और अपनी हालात से उबरने के लिए आध्यात्मिक मदद मांगती थीं। शुरू में उन्हें आध्यात्मिक सहायता दी जाती थी, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि प्रार्थना को ठोस रूप दिए जाने की आवश्यकता है, जो एक छोटे प्रार्थना दल के रूप में शुरू हुआ और जीवन बदलने वाली नींव बन गई। समय के साथ ऐसे स्वयंसेवी आने लगे जो न सिर्फ माताओं बल्कि उनके बच्चों की भी मदद करना चाहते थे। इससे एक ऐसे तंत्र का रास्ता बना जो पूरी तरह से मदद देता है। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और इस इलाके में अकेली ऐसी सेवा है जो पूरे परिवार को मुफ्त धार्मिक एवं चिकित्सा संबंधी मदद देती है। धर्म बहनें बतलाती हैं कि यह कोई आसान सफर नहीं था। उन्हें युवाओं की मुश्किलों को समझने और उनका सामना करने के लिए पढ़ाई, शोध और नए तरीके खोजने पड़े। मदर विकी कहती हैं, हमने अपने काम को बाइबल, यूकरिस्ट एवं मरियम की आध्यात्मिकता के साथ मिलाना सीखा और इससे संत मोनिका केंद्र में फर्क पड़ा। मूल विचार यह था कि संगठन का नाम भले समारिताने रखा जाए ताकि उन लोगों की परवाह की जा सके जो रास्ते में घायल हुए हैं और जिन्हें मदद की जरूरत है। हालांकि परियोजना को देखते हुए धर्म बहनों ने उन बहादुर माताओं को याद किया जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन के लिए बिना थके लड़ाई लड़ी और संगठन का नाम संत मोनिका के नाम पर रखने का फैसला किया, जो दृढ़ता एवं विश्वास की मिसाल हैं और जिन्होंने अपने बेटे संत अगस्टीन के मन परिवर्तन के लिए सालों तक प्रार्थना की। यह नाम युवाओं के लिए समर्थन के साथ साथ पुनर्वास और उम्मीद में माताओं की बुनियादी भूमिका को भी दिखाता है। संत मोनिका संगठन के सफर में कई कहानियां जुड़ी हैं। उनमें से एक मरीसेल की कहानी है, एक युवा महिला जिसका जीवन चुनौतियों से भरा था। मरीसेल के जन्म के बाद उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और वह कई केंद्रों में पली बढ़ी। बचपन में उसे प्यार नहीं मिला था जिसके कारण उसे नशीली दवाओं का सहारा लेना पड़ा। अपनी लत से उबरने के लिए उसने कई तरह के उपचार कराए, लेकिन सबसे दर्दनाक पल तब आया जब सरकार ने उसके बच्चों को अपनी निगरानी में ले ली। उन्हें वापस पाने का एकमात्र तरीका था सफलतापूर्वक इलाज कराना, जो उसे नामुमकिन लग रहा था।
उसने संत मोनिका पहुंचने के दिन ही अपनी जान लेने का फैसला किया, लेकिन किसी आकस्मिक चीज ने उसे रोक दी। वह मदर विकी के मैक्सिकन उच्चारण से आकर्षित हो गई। उस मामूली सी बात ने उसकी रक्षात्मक मानसिकता को तोड़ दी और एक लंबी तथा कठिन प्रक्रिया का मार्ग खोला। दाम बहनों के लिए कई कठिनाइयां आई, निराशा के पल आए और डर भरी रातें गुजरी। हालांकि लगातार साथ देने, सुनने और चिकित्सा समर्थन ने मरी सेल को एक नई संभावना का अनुभव करने में मदद की। मदर विकी को एक खास दिन याद है जब वे प्रार्थनालय में प्रार्थना कर रही थीं और उन्हें लगा कि ईश्वर खुद मरी सेल को उन्हें सौंप रहे हैं, जैसे भला समारी रास्ते में किसी घायल इंसान को नहीं छोड़ता। उस अनुभव ने उसके धैर्य एवं बिना उम्मीद खोए हर इंसान का साथ देने की उसकी प्रतिबद्धता को फिर से जगा दिया। थोड़े समय बाद मरी सेल एक विशेष केंद्र में भर्ती होने के लिए राजी हो गए। यह उससे मिले आध्यात्मिक साथ के कारण संभव हुआ। इस तरह उसका इलाज कामयाब रहा। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने और स्थिरता दिखाने पर उसे बच्चों को वापस दे दिया गया। आज भी तेरा दिल फ्यूम में येसु के शिष्य धम बहनों का मिशन खुद को समर्पित करना और आशा का साक्ष्य देना है। संत मोनिका केंद्र एक ऐसी जगह बन गई है जहां बहुत से लोगों को एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं और वे अपने जीवन को फिर से बना सकते हैं। जैसा कि मदर विकी कहती हैं, यहां हर युवा समाज के अकेलेपन के बावजूद साथ रहने का अनुभव करता है। जिस पल वे दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और यहां बैठते हैं, वे अकेले नहीं होते। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत मोनिका संगठन के बारे सुन रहे थे, जो नशे की लत से परेशान युवाओं और परिवारों का साथ देता है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

0: आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कथनी और करनी। लेखक है माइकल होजेस। श्रोताओ, आपने संत कबीर जी के इस दोहे को तो जरूर सुना होगा, करनी बिन कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, कुत्ते समान भूकत फिरे सुनी सुनाई बात। संत कबीर जी कहते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति सिर्फ बातें करता है, अपने जीवन में उसके अनुसार बर्ताव नहीं करता। केवल विचार करके या बातें करके बात नहीं बनेगी, बर्ताव करना जरूरी है। केवल बातें करने वालों को कबीर ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति कुत्ते के समान सिर्फ भौंकते रहते हैं और दूसरों की सुनी सुनाई बात सिर्फ दोहराते हैं। श्रोताओ, आपने कुछ नेताओं समाज सुधारकों के भाषण सुने होंगे। वे समाज के उत्थान और देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं, उनके भाषणों में सिर्फ अपना स्वार्थ छिपा रहता है। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। बहुधा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दिए गए भाषणों में वे खुद फंस जाते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। भलाई इसी में है कि वे उतना ही बोलें जिसे वे कर सकते हों। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस के लिखे नाटिका कथनी और करनी।
1: खाने का वक्त हो गया है, चलो मैं खाना निकाल रही हूँ, खाना खा लो।
2: तुमसे कह तो दिया है कि मुझे भूख नहीं है।
1: तो ऐसे भूखे कब तक रहेंगे आप? इस उम्र में शुगर डाउन हो गई है, लेने के देने पड़ सकते हैं।
2: तो तुम क्या समझती हो, क्या अभी मुझे यानी हमें अभी लेने के देने नहीं पड़े?
1: अब जो होना था वो तो हो ही चुका है ना, अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या फायदा।
2: हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, आशा को तुमने ही तो सिर चढ़ा रखा था, तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतना पड़ रही है।
1: आप भी हद करते हैं, हमारी बड़ी बेटी आशा ने गैर जात के लड़के से लव मैरिज ही तो की है ना, कोई डाका तो नहीं डाला है कहीं पर?
2: वाह, हमारी बेटी ने लड़के के लिए गैर जात में डाका ही तो डाला है, और तुम्हें लग रहा है उसने कहाँ डाका डाला है?
1: अरे वाह, तो आप तो ऐसे बिगड़ रहे हैं जैसे कि दुनिया में एक हमारी बेटी ने ही गैर जात के लड़के से लव मैरिज की है। समाज भरा पड़ा है ऐसे मामलों से, समझे?
2: बहुत अच्छे, बहुत खूब। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे दिमाग के भेजे में अकल नाम की चीज होती ना, तो तुम ऐसा नहीं कहती, समझी तुम? अरे तुम औरों से मेरी तुलना कर रही हो, मेरी। क्या तुम्हें पता नहीं कि और लोग आलतू फालतू लोग होंगे जिनकी बेटियां ऐसा करके बैठी हैं?
1: और आप?
2: अरे मेरा मेरा मुझसे क्या पूछती हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ, समाज में मेरी एक इज्जत है, लोगों के बीच मुझे समाज सेवक और नेताजी के नाम से और रुतबे से जाना जाता है, अपनी जन कल्याण पार्टी में भी मेरी बहुत इज्जत है।
1: हाँ, फिर भी अभी तक पार्षद तक का चुनाव नहीं जीत पाए हैं आप, है ना?
2: वो तो अपनों के ही भीतरी घात यानी सेबोटेज का शिकार हो जाता हूँ, वरना क्या सारे शहर के लोग मुझे जानते नहीं और मेरा सम्मान नहीं करते क्या?
1: पार्षद का चुनाव जीतने के लिए ना तो सारे शहर को किसी उम्मीदवार को जानने की जरूरत होती है और ना उसका सम्मान करने की। उम्मीदवार को तो बस उसके वार्ड वाले जानते हैं और सम्मान करते हैं, यही काफी है उनके लिए।
2: अब बताओ, जब घरवाली ही मेरी आलोचना करने पर तुल जाए तो फिर गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है?
1: उनसे भी अच्छी ही उम्मीद की जा सकती है, बुजुर्गों ने कहा है ना, व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए।
2: और अगर उसके बाद भी परिणाम नकारात्मक आए
1: तो इसे अपने भाग्य का दोष मान लेना चाहिए।
2: वाह वाह वाह, बहुत खूब, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारा। मैं सब जानता हूँ कि अपनी आशा को गैर जात के लड़के से प्रेम व्रेम और प्रेम विवाह के लिए किसने भड़काया होगा।
1: अरे अब हर बार की तरह इस मामले में भी ये मत कह देना कि इसमें भी विदेशी ताकत का ही हाथ है, समझे?
2: बहुत खूब, और एक तुम हो, बेटी ने गैर जात में शादी कर ली और ये मोहतरमा कितनी खिलखिला रही है।
1: अरे तो क्या कर बैठी है, रो बैठ कर, चार दिन से आप यही कह रहे हैं, क्या नतीजा निकला उसका? समझदारी इसी में है कि वास्तविकता को स्वीकार लें शांति से, समझे?
2: मतलब तुम्हारी नजर में उसका कोई दोषी नहीं है?
1: है ना, है क्यों नहीं?
2: कौन कौन है वो, मुझे नाम बताओ उसका, मैं उसका खून पी जाऊंगा।
1: अच्छा तो फिर आप अपना ही खून पी लोगे क्या?
2: क्या बकवास कर रही हो तुम?
1: ठीक ही तो कह रही हूँ, जब से आपने दोषी कौन है ये पूछा, और मेरी नजर में आपसे बड़ा दोषी और कोई नहीं है।
2: क्या बात करती हो उषा तुम?
1: मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, आप समाज में अपनी छवि समाज सेवक और एक नेता की बनाते हैं और मानते भी हैं, तभी तो आप किसी क्लब, किसी पार्टी या जलसे के अपने हर भाषण में सामाजिक और देश की एकता और अखंडता के लिए अंतर जातीय विवाह पर जोर दिया करते हैं, ये भूल कर कि अपनी भी कोई हो सकती है बेटी जो ऐसा कर सकती है।
2: तो वो तो सिर्फ भाषण ही होता था, उसमें सच्चाई कहाँ रहती थी।
1: तभी तो तुम्हारी बेटी ने उस सच्चाई को सच्चाई में बदल दिया।
2: ओहो, तुम मूर्खों की इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई कि नेताओं के भाषण उनके अपने घर वालों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होते हैं। हम तो दिन भर में बहुत कुछ कहते रहते हैं और एक नई राह पर लोगों को मार्गदर्शन देते हैं।
1: हाँ बस, तो फिर इतनी हायतौबा किस लिए? नेता का परिवार भी तो समाज का एक हिस्सा होता है ना। तो चल पड़ी उषा भी एक नई राह पर अपने हमसफर के साथ, ठीक है?
2: ओहो, तुम भी अपनी बेटी आशा की मर्जी में रजामंद दिखाई पड़ती हो। अरे उससे किसने कहा था कि मेरे भाषण पर मेरे ही घर में अमल करने के लिए?
1: हाँ, मैं भी अपनी बेटी की खुशी में बिल्कुल खुश हूँ। सचमुच अंतर जाति विवाह से समाज में, देश में एकता और अखंडता स्थापित की जा सकती है और धर्म और जात के बंधनों को तोड़ा जा सकता है।
2: तुम भी?
1: अब जब हमें उषा की शादी को आज नहीं तो कल स्वीकार नहीं होगा, तो फिर हम उसकी शादी को आज ही क्यों ना स्वीकार लें?
2: तुम स्वीकारती रहो, मैं स्वीकारने वाला नहीं। मैं सब समझता हूँ, ये सब मेरे विरोधियों की चाल है और अब तुम भी उनसे मिल गई हो। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ।
1: ठीक है, तो फिर बढ़ाते रहो अपनी शुगर और अपना ब्लड प्रेशर, मुझे क्या फर्क पड़ता है। नमस्कार भाई साहब, आओ अर्चना।
3: नमस्कार भाभी जी, कैसे हैं तिवारी जी?
1: हाँ, अब तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सुबह ब्लड टेस्ट कराया है, शाम को रिपोर्ट में पता चलेगा शुगर कितनी है। आइए आप लोग।
3: हाँ तिवारी जी, क्या हाल है? क्या यार, अच्छी भली तबीयत को किसकी नज़र लग गई।
4: नमस्कार भाई साहब।
2: नमस्कार भाभी जी, आओ सिंह साहब। बस मत पूछो यार, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से।
4: कौन सी बात करते हैं भाई साहब आप?
3: हाँ यार, शुभ शुभ सोचो और शुभ शुभ बोलो, अब जो हो गया सो हो गया।
1: आप लोग बातें करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी।
4: उसकी तकलीफ मत करो उषा।
3: हाँ भाभी जी, हम तो तिवारी जी को देखने आए थे।
1: अरे भाई साहब, अपना हालचाल इन्होंने खुद बिगाड़ा है, अब बताइए आप ही, जो हो चुका है उस पर बवाल क्या खड़ा करना? अपनी तबीयत बिगाड़ने की इनकी इच्छा थी ज्यादा।
3: बिल्कुल सही कहा भाभी जी आपने।
2: सिंह साहब आप भी गजब करते हैं, बेटी अपनी जड़ों से अलग हो जाए, नई जमीन तलाश करे, वह भी अनजानी जमीन, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं होगा?
4: मगर भाई साहब, आशा ने जो नई जमीन तलाशी है वह अनजानी कहाँ है, वह लड़का तो उसका देखा भला ही है ना।
1: अरे भाई, मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ अब।
3: देखो तिवारी जी, बुरा मत मानना, क्या आप ही हर समय अंतर जातीय विवाह की दुहाई नहीं दिया करते थे? इस तरह तो आशा बेटी ने आपके सपने को सच ही तो किया है।
2: अंतर जातीय विवाह की दुहाई मैं जरूर दिया करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी बेटी भी ऐसा ही करे। राजनीति में तो इस तरह के हथकंडे अपनाना ही पड़ते हैं, घर में ही राजनीति थोड़ी की जा सकती है।
3: तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसे आप इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है।
4: और ऐसा करने वाले को इस तरह की परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है भाई साहब,
1: क्योंकि उसने ऐसा हो जाने की कल्पना दूसरों के साथ ही कर रखी होती है, बस वो ये सब तो नहीं जानता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों?
3: इसलिए तिवारी जी, यदि जो आप कहते हैं और वही करने और होने की आशा करते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती, न उन्हें ये दिन देखना पड़ता है। इसलिए अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए, वही करना चाहिए और वही होने की आशा भी करना चाहिए जो आप कहते हैं।
2: समझ गया, मैं समझ गया सिंह साहब, मैं समझ गया। अब आज से मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। उषा, आशा को फोन कर दो कि मैं उससे और दामाद से मिलना चाहता हूँ।
1: हाँ हाँ, अभी लो।
0: कथनी और करनी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है रविवार कार्यक्रम भक्ति गीत एवं चेतना जागरण। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत एक ऐसे संगठन को प्रस्तुत कर रहे हैं जो परेशान युवाओं एवं परिवारों का साथ देता है। जब परिवार में किसी बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं होता। बच्चे का आगमन उनके जीवन में नई उमंग, नई आशा और अनगिनत सपने लेकर आता है। वे अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कल्पना करते हैं और उसके सुखद जीवन के लिए हर संभव प्रयास करने का संकल्प लेते हैं। लेकिन माता पिता बनने के साथ उनकी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। बच्चे का शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित करना उनका सबसे बड़ा दायित्व होता है। यदि बच्चा संस्कारी, मेहनती और होनहार बनता है तो माता पिता अपने सभी कष्ट एवं संघर्ष भूल जाते हैं। उसकी प्रत्येक उपलब्धि उन्हें गर्व एवं संतोष से भर देता है। किंतु यदि बच्चा बुरी संगति, नशे, अनुशासनहीनता या अन्य गलत आदतों के जाल में फंसने लगे तो वही माता पिता गहरे दुख, चिंता और निराशा से घिर जाते हैं। वे स्वयं को असहाय महसूस करते और अपने बच्चे को सही मार्ग पर लाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। यीशु की शिष्य धर्म बहनों ने माताओं के लिए एक प्रार्थना दल शुरू किया है ताकि वे अपने बच्चों की मदद कर सकें। यह प्रार्थना दल अब एक ऐसा संगठन बन चुका है जो नशे की लत से जूझ रहे युवाओं की मदद करता है। रियो ग्रांडे का औद्योगिक शहर दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के दक्षिण सिरे पर स्थित है, जहां पूरे अर्जेंटीना से लोग नौकरी के अवसर एवं बेहतर आर्थिक स्थिति की तलाश में खींचे चले आते हैं। हालांकि अत्यधिक ठंड, हवा एवं अकेलापन के कारण लोग अक्सर अवसाद, उदासी एवं नशेपन के शिकार होते हैं। ऐसे ही माहौल में यीशु के शिष्य धर्म बहनों ने अपना मिशन शुरू किया है। वे पहली बार 2012 में इस द्वीप पर पहुंची। केंद्र में सबसे कमजोर लोगों, खासकर अकेलापन, अवसाद और नशे की लत से परेशान लोगों की मदद की जाती है। मदर विकी याद करते हुए कहती हैं, हमें यह महसूस हुआ कि हमारे आध्यात्मिक मिशन को समय की मांग के अनुरूप बदलना होगा ताकि उन गांवों पर मरहम लगाया जा सके। संत मोनिका संगठन की शुरुआत उन माताओं के लिए एक स्वयं सहायता दल के रूप में हुई है जिनके बच्चे नशे की लत में फंसे हुए हैं। माताएं बहुत अधिक दर्द लेकर प्रेरित केंद्र आती थीं और अपनी हालात से उबरने के लिए आध्यात्मिक मदद मांगती थीं। शुरू में उन्हें आध्यात्मिक सहायता दी जाती थी, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि प्रार्थना को ठोस रूप दिए जाने की आवश्यकता है, जो एक छोटे प्रार्थना दल के रूप में शुरू हुआ और जीवन बदलने वाली नींव बन गई। समय के साथ ऐसे स्वयंसेवी आने लगे जो न सिर्फ माताओं बल्कि उनके बच्चों की भी मदद करना चाहते थे। इससे एक ऐसे तंत्र का रास्ता बना जो पूरी तरह से मदद देता है। यह सेवा पूरी तरह से मुफ्त है और इस इलाके में अकेली ऐसी सेवा है जो पूरे परिवार को मुफ्त धार्मिक एवं चिकित्सा संबंधी मदद देती है। धर्म बहनें बतलाती हैं कि यह कोई आसान सफ़र नहीं था। उन्हें युवाओं की मुश्किलों को समझने और उनका सामना करने के लिए पढ़ाई, शोध और नए तरीके खोजने पड़े। मदर विकी कहती हैं, हमने अपने काम को बाइबल, यूकरिस्ट एवं मरियम की आध्यात्मिकता के साथ मिलाना सीखा और इससे संत मोनिका केंद्र में फर्क पड़ा। मूल विचार यह था कि संगठन का नाम भले समारिताने रखा जाए, ताकि उन लोगों की परवाह की जा सके जो रास्ते में घायल हुए हैं और जिन्हें मदद की जरूरत है। हालांकि परियोजना को देखते हुए धम्म बहनों ने उन बहादुर माताओं को याद किया जिन्होंने अपने बच्चों के जीवन के लिए बिना थके लड़ाई लड़ी और संगठन का नाम संत मोनिका के नाम पर रखने का फैसला किया, जो दृढ़ता एवं विश्वास की मिसाल हैं और जिन्होंने अपने बेटे संत अगस्टीन के मन परिवर्तन के लिए सालों तक प्रार्थना की। यह नाम युवाओं के लिए समर्थन के साथ साथ पुनर्वास और उम्मीद में माताओं की बुनियादी भूमिका को भी दिखाता है। संत मोनिका संगठन के सफर में कई कहानियां जुड़ी हैं। उनमें से एक मरीसेल की कहानी है, एक युवा महिला जिसका जीवन चुनौतियों से भरा था। मरीसेल के जन्म के बाद उसके माता पिता ने उसे छोड़ दिया था और वह कई केंद्रों में पली बढ़ी। बचपन में उसे प्यार नहीं मिला था जिसके कारण उसे नशीली दवाओं का सहारा लेना पड़ा। अपनी लत से उबरने के लिए उसने कई तरह के उपचार कराए, लेकिन सबसे दर्दनाक पल तब आया जब सरकार ने उसके बच्चों को अपनी निगरानी में ले ली। उन्हें वापस पाने का एकमात्र तरीका था सफलतापूर्वक इलाज कराना, जो उसे नामुमकिन लग रहा था। उसने संत मोनिका पहुंचने के दिन ही अपनी जान लेने का फैसला किया, लेकिन किसी आकस्मिक चीज ने उसे रोक दी। वह मदर विकी के मैक्सिकन उच्चारण से आकर्षित हो गई। उस मामूली सी बात ने उसकी रक्षात्मक मानसिकता को तोड़ दी और एक लंबी तथा कठिन प्रक्रिया का मार्ग खोला। धम्म बहनों के लिए कई कठिनाइयां आईं, निराशा के पल आए और डर भरी रातें गुजरी। हालांकि लगातार साथ देने, सुनने और चिकित्सा समर्थन ने मरीसेल को एक नई संभावना का अनुभव करने में मदद की। मदर विकी को एक खास दिन याद है जब वे प्रार्थनालय में प्रार्थना कर रही थीं और उन्हें लगा कि ईश्वर खुद मरीसेल को उन्हें सौंप रहे हैं, जैसे भला समारी रास्ते में किसी घायल इंसान को नहीं छोड़ता। उस अनुभव ने उसके धैर्य एवं बिना उम्मीद खोए हर इंसान का साथ देने की उसकी प्रतिबद्धता को फिर से जगा दिया। थोड़े समय बाद मरीसेल एक विशेष केंद्र में भर्ती होने के लिए राजी हो गए। यह उससे मिले आध्यात्मिक साथ के कारण संभव हुआ। इस तरह उसका इलाज कामयाब रहा। स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने और स्थिरता दिखाने पर उसे बच्चों को वापस दे दिया गया। आज भी तेरा दिलफ्यूम में येसु के शिष्य धम्म बहनों का मिशन खुद को समर्पित करना और आशा का साक्ष्य देना है। संत मोनिका केंद्र एक ऐसी जगह बन गई है जहां बहुत से लोगों को एहसास होता है कि वे अकेले नहीं हैं और वे अपने जीवन को फिर से बना सकते हैं। जैसा कि मदर विकी कहती हैं, यहाँ हर युवा समाज के अकेलेपन के बावजूद साथ रहने का अनुभव करता है। जिस पल वे दरवाजे के अंदर प्रवेश करते हैं और यहाँ बैठते हैं, वे अकेले नहीं होते। श्रोताओं, रविवार कार्यक्रम के अंतर्गत संत मोनिका संगठन के बारे सुन रहे थे, जो नशे की लत से परेशान युवाओं और परिवारों का साथ देता है। और अब आए सुनते हैं आज का भक्ति गीत।

आज चेतना जागरण कार्यक्रम में प्रस्तुत है इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र द्वारा तैयार नाटिका कथनी और करनी। लेखक है माइकल होजेस।

0: और दूसरों की सुनी सुनाई बात सिर्फ दोहराते हैं। श्रोताओं, आपने कुछ नेताओं, समाज सुधारकों के भाषण सुने होंगे। वे समाज के उत्थान और देश के विकास के लिए बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं। उनके भाषणों में सिर्फ अपना स्वार्थ छिपा रहता है। उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। बहुधा अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दिए गए भाषणों में वे खुद फंस जाते हैं और लेने के देने पड़ जाते हैं। भलाई इसी में है कि वे उतना ही बोलें जिसे वे कर सकते हों। आशा है आज की नाटिका इस दिशा में आपका मार्गदर्शन कर सके। तो आइए सुनते हैं माइकल होजेस के लिखे नाटिका कथनी और करनी।
1: खाने का वक्त हो गया है, चलो मैं खाना निकाल रही हूँ, खाना खा लो।
2: तुमसे कह तो दिया है कि मुझे भूख नहीं है।
1: तो ऐसे भूखे कब तक रहेंगे आप? इस उम्र में शुगर डाउन हो गई है, लेने के देने पड़ सकते हैं।
2: तो तुम क्या समझती हो, क्या अभी मुझे यानी हमें अभी लेने के देने नहीं पड़े?
1: अब जो होना था वो तो हो ही चुका है ना, अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटने से क्या फायदा।
2: हाँ हाँ, तुम तो यही कहोगी, आशा को तुमने ही तो सिर चढ़ा रखा था, तुम्हारी गलती की सजा मुझे भुगतना पड़ रही है।
1: आप भी हद करते हैं, हमारी बड़ी बेटी आशा ने गैर जात के लड़के से लव मैरिज ही तो की है ना, कोई डाका तो नहीं डाला है कहीं पर?
2: वाह, हमारी बेटी ने लड़के के लिए गैर जात में डाका ही तो डाला है, और तुम्हें लग रहा है उसने कहाँ डाका डाला है?
1: अरे वाह, तो आप तो ऐसे बिगड़ रहे हैं जैसे कि दुनिया में एक हमारी बेटी ने ही गैर जात के लड़के से लव मैरिज की है। समाज भरा पड़ा है ऐसे मामलों से, समझे?
2: वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूब। मेरे ख्याल से अगर तुम्हारे दिमाग के भेजे में अकल नाम की चीज होती ना, तो तुम ऐसा नहीं कहती, समझी तुम? अरे तुम औरों से मेरी तुलना कर रही हो, मेरी? क्या तुम्हें पता नहीं कि और लोग आलतू फालतू लोग होंगे जिनकी बेटियां ऐसा करके बैठी हैं?
1: और आप?
2: अरे मेरा मेरा मुझसे क्या पूछती हो तुम? क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ? समाज में मेरी एक इज्जत है, लोगों के बीच मुझे समाज सेवक और नेताजी के नाम से और रुतबे से जाना जाता है। अपनी जन कल्याण पार्टी में भी मेरी बहुत इज्जत है।
1: हाँ, फिर भी अभी तक पार्षद तक का चुनाव नहीं जीत पाए हैं आप, है ना?
2: वो तो अपनों के ही भीतरी घात यानी सेबोटेज का शिकार हो जाता हूँ, वरना क्या सारे शहर के लोग मुझे जानते नहीं और मेरा सम्मान नहीं करते क्या?
1: पार्षद का चुनाव जीतने के लिए ना तो सारे शहर को किसी उम्मीदवार को जानने की जरूरत होती है और ना उसका सम्मान करने की। उम्मीदवार को तो बस उसके वार्ड वाले जानते हैं और सम्मान करते हैं, यही काफी है उनके लिए।
2: अब बताओ, जब घरवाली ही मेरी आलोचना करने पर तुल जाए तो फिर गैरों से क्या उम्मीद की जा सकती है?
1: उनसे भी अच्छी ही उम्मीद की जा सकती है, बुजुर्गों ने कहा है ना, व्यक्ति को हमेशा सकारात्मक ही सोचना चाहिए।
2: और अगर उसके बाद भी परिणाम नकारात्मक आए
1: तो इसे अपने भाग्य का दोष मान लेना चाहिए।
2: वाह वाह वाह, बहुत खूब, चित भी तुम्हारी और पट भी तुम्हारा। मैं सब जानता हूँ कि अपनी आशा को गैर जात के लड़के से प्रेम व्रेम और प्रेम विवाह के लिए किसने भड़काया होगा।
1: अरे अब हर बार की तरह इस मामले में भी ये मत कह देना कि इसमें भी विदेशी ताकत का ही हाथ है, समझे?
2: बहुत खूब, और एक तुम हो, बेटी ने गैर जात में शादी कर ली और ये मोहतरमा कितनी खिलखिला रही है।
1: अरे तो क्या कर बैठी है, रो बैठ कर, 4 दिन से आप यही कह रहे हैं, क्या नतीजा निकला उसका? समझदारी इसी में है कि वास्तविकता को स्वीकार लें शांति से, समझे?
2: मतलब तुम्हारी नजर में उसका कोई दोषी नहीं है?
1: है ना, है क्यों नहीं?
2: कौन कौन है वो, मुझे नाम बताओ उसका, मैं उसका खून पी जाऊंगा।
1: अच्छा तो फिर आप अपना ही खून पी लोगे क्या?
2: क्या बकवास कर रही हो तुम?
1: ठीक ही तो कह रही हूँ, जब से आपने दोषी कौन है ये पूछा, और मेरी नजर में आपसे बड़ा दोषी और कोई नहीं है।
2: क्या बात करती हो उषा तुम?
1: मैं बिल्कुल ठीक कहती हूँ, आप समाज में अपनी छवि समाज सेवक और एक नेता की बनाते हैं और मानते भी हैं, तभी तो आप किसी क्लब, किसी पार्टी या जलसे के अपने हर भाषण में सामाजिक और देश की एकता और अखंडता के लिए अंतर जातीय विवाह पर जोर दिया करते हैं, ये भूल कर कि अपनी भी कोई हो सकती है बेटी जो ऐसा कर सकती है।
2: तो वो तो सिर्फ भाषण ही होता था, उसमें सच्चाई कहाँ रहती थी?
1: तभी तो तुम्हारी बेटी ने उस सच्चाई को सच्चाई में बदल दिया।
2: ओहो, तुम मूर्खों के इतनी सी बात भी समझ में नहीं आई कि नेताओं के भाषण उनके अपने घर वालों के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए होते हैं। हम तो दिन भर में बहुत कुछ कहते रहते हैं और एक नई राह पर लोगों को मार्गदर्शन देते हैं।
1: हाँ बस, तो फिर इतनी हाय तौबा किस लिए, नेता का परिवार भी तो समाज का एक हिस्सा होता है ना। तो चल पड़ी उषा भी एक नई राह पर अपने हमसफर के साथ, ठीक है?
2: ओहो, तुम भी अपनी बेटी आशा की मर्जी में रजामंद दिखाई पड़ती हो।

0: अरे उससे किसने कहा था कि मेरे भाषण पर मेरे ही घर में अमल करने के लिए?
1: हाँ, मैं भी अपनी बेटी की खुशी में बिल्कुल खुश हूँ। सचमुच अंतर जाति विवाह से समाज में, देश में एकता और अखंडता स्थापित की जा सकती है और धर्म और जात के बंधनों को तोड़ा जा सकता है।
0: तुम भी?
1: अब जब हमें उषा की शादी को आज नहीं तो कल स्वीकारना ही होगा, तो फिर हम उसकी शादी को आज ही क्यों ना स्वीकार लें?
0: तुम स्वीकारती रहो, मैं स्वीकारने वाला नहीं। मैं सब समझता हूँ, ये सब मेरे विरोधियों की चाल है, और अब तुम भी उनसे मिल गई हो। मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूँ।
1: ठीक है, तो फिर बढ़ाते रहो अपनी शुगर और अपना ब्लड प्रेशर, मुझे क्या फर्क पड़ता है? नमस्कार भाई साहब, आओ अर्चना।
2: नमस्कार भाभी जी, कैसे हैं तिवारी जी?
1: हाँ, अब तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, सुबह ब्लड टेस्ट कराया है, शाम को रिपोर्ट में पता चलेगा शुगर कितनी है। आइए आप लोग।
2: हाँ तिवारी जी, क्या हाल है? क्या यार, अच्छी भली तबीयत को किसकी नजर लग गई।
1: नमस्कार भाई साहब।
0: नमस्कार भाभी जी, आओ सिंह साहब। बस मत पूछो यार, घर को आग लग गई घर के ही चिराग से।
1: कौन सी बात करते हैं भाई साहब आप?
2: हाँ यार, शुभ शुभ सोचो और शुभ शुभ बोलो। अब जो हो गया सो हो गया।
1: आप लोग बातें करिए, मैं चाय लेकर आती हूँ अभी। उसकी तकलीफ मत करो उषा।
2: हाँ भाभी जी, हम तो तिवारी जी को देखने आए थे।
1: अरे भाई साहब, अपना हाल चाल इन्होंने खुद बिगाड़ा है। अब बताइए, आप ही जो हो चुका है उस पर बवाल क्या खड़ा करना? अपनी तबीयत बिगाड़ने की इनकी इच्छा थी ज्यादा।
2: बिल्कुल सही कहा भाभी जी आपने।
0: सिंह साहब आप भी गजब करते हैं। बेटी अपनी जड़ों से अलग हो जाए, नई जमीन तलाश करे, वह भी अनजानी जमीन, तो क्या गुस्सा नहीं आएगा, दुख नहीं होगा?
1: मगर भाई साहब, आशा ने जो नई जमीन तलाशी है वह अनजानी कहाँ है? वह लड़का तो उसका देखा भला ही है ना। अरे भाई, मैं तो इन्हें समझा समझा कर थक गई हूँ अब।
2: देखो तिवारी जी, बुरा मत मानना, क्या आप ही हर समय अंतरजातीय विवाह की दुहाई नहीं दिया करते थे? इस तरह तो आशा बेटी ने आपके सपने को सच ही तो किया है।
0: अंतरजाति विवाह की दुहाई मैं जरूर दिया करता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता था कि मेरी बेटी भी ऐसा ही करे। राजनीति में तो इस तरह के हथकंडे अपनाना ही पड़ते हैं, घर में ही राजनीति थोड़ी की जा सकती है।
2: तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हुआ उसे आप इसलिए स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपकी कथनी और करनी दोनों में बहुत अंतर है।
1: और ऐसा करने वाले को इस तरह की परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है भाई साहब, क्योंकि उसने ऐसा हो जाने की कल्पना दूसरों के साथ ही कर रखी होती है। बस वो ये सब तो नहीं जानता है कि उसके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। क्यों?
2: इसलिए तिवारी जी, यदि जो आप कहते हैं और वही करने और होने की आशा करते हैं, तो आपको परेशानियों का सामना करने की जरूरत नहीं पड़ती, न उन्हें ये दिन देखना पड़ता है। इसलिए अपनी कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहिए, वही करना चाहिए और वही होने की आशा भी करना चाहिए जो आप कहते हैं।
0: समझ गया, मैं समझ गया सिंह साहब, मैं समझ गया। अब आज से मेरी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं रहेगा। उषा, आशा को फोन कर दो कि मैं उससे और दामाद से मिलना चाहता हूँ।
1: हाँ, अभी लो।
3: कथनी और करनी। अभी अभी आपने वाटिकन रेडियो से यह नाटिका सुनी। इसके कलाकार थे मेरी प्रीति जोजो, अपर्णा सिंह, पीटर जमरा और माइकल होजेस। इंदौर सत्य प्रकाशन केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही हमारा आज का प्रसारण समाप्त होता है। नमस्कार।

0: लौदेतुर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय। आप सुन रहे हैं वैटिकन रेडियो। वैटिकन रेडियो के चैपल से पौत्र रोजरी माला विनती।
1: क्रूस का चिन्ह,
2: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।
1: प्रेरितों का धर्म सार,
2: स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके इकलौते पुत्र हमारे

0: पृथ्वी और मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्रता की कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
0: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
1: हे मेरे यीशु,
0: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है। आमीन।
1: आनंद के पहला भेद, गैब्रियल दूत माता मरियम को यीशु के जन्म का संदेश देते हैं,
2: मतलब संत पापा और कलीसिया के लिए।
1: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
0: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
1: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
0: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद के दूसरा भेद, माता मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है,
2: मतलब बीमार से पीड़ित भाई बहनों के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का तीसरा भेद, हमारे प्रभु जन्मते हैं,
2: मतलब विश्व शांति के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का चौथा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में चढ़ाए जाते हैं,
2: मतलब पापियों के मन फिराव के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल सदा बने रहेंगे, आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है, आमीन।
0: आनंद का पांचवा भेद, प्रभु यीशु मंदिर में पाए जाते हैं,
2: मतलब शोधक अग्नि की दुखित आत्माओं के लिए।
0: हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो।
1: हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय, आमीन।
0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।

0: प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु।
1: हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
0: पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो,
1: जैसे वे आदि में थे, अब हैं और अनंत काल तक सदा बने रहेंगे। आमीन।
0: हे मेरे यीशु,
1: हमारे पापों को क्षमा कर, नरक की अग्नि से हमें बचा, सभी आत्माओं को स्वर्ग की ओर ले चल, विशेषकर उन आत्माओं को जिन्हें तेरी दया की अति आवश्यकता है।

0: कुमारी मरियम की स्तुति विनती। प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त दया कर,
1: ख्रिस्त दया कर,
0: प्रभु दया कर,
1: प्रभु दया कर,
0: ख्रिस्त हमारी सुन,
1: ख्रिस्त हमारी विनती पूरी कर।
0: स्वर्ग के पिता ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता
1: हम पर दया कर,
0: पवित्र आत्मा ईश्वर
1: हम पर दया कर,
0: संत मरियम
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वर की पवित्र माँ
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारियों की पवित्र कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्त की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ईश्वरीय कृपा की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति निर्मल माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति शुद्ध माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: कुमारी माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: निष्कलंक माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रिय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रशंसनीय माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सुसमति की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: सृष्टिकर्ता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: मुक्तिदाता की माता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति चौकस कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्तुति योग्य कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शक्तिमती कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दयालु कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मनिष्ठ कुमारी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हमारे आनंद का मूल
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पवित्र आत्मा का मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदरणीय पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भक्ति का उत्तम पात्र
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आध्यात्मिक गुलाब
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दाऊद का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: हस्तिदंत का गढ़
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ण मंदिर
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संधि की मंजूषा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: भोर का तारा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: रोगियों का स्वास्थ्य
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: पापियों की शरण
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: दुखियों का दिलासा
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: ख्रिस्तियों की सहायता
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्गदूतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्म पुरखों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: नवियों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: प्रेरितों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शहीदों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: धर्मवीरों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: संतों की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: आदि पाप रहित उत्पन्न महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: स्वर्ग में उद्गृहित महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: अति पवित्र माला की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर,
0: शांति की महारानी
1: हमारे लिए प्रार्थना कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमें क्षमा कर।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: प्रभु हमारी सुन।
0: हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है,
1: हम पर दया कर।
0: हम प्रार्थना करें।

0: से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन।
1: पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तुता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने रोटी और मछली के चमत्कार पर चिंतन किया और विश्वासों को याद दिलाया कि ख्रिस्त से मुलाकात एक तृप्ति का अनुभव है। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 2 अगस्त को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
0: जब हम सुसमाचार पाठ सुनते हैं तो हम अक्सर यीशु के चमत्कारों को सुनते हैं। वे ऐसे कार्य हैं जो हमारे प्रति उनके विशेष समर्पण को दिखाते हैं, अर्थात उस मुक्ति को जिसको वे दुनिया में लाते हैं। प्रभु को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो जीवन को अर्थ प्रदान करता और बुराई एवं पाप से मुक्ति दिलाता है। चमत्कारों के गूढ़ अर्थ पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, अंधे को दृष्टि एवं बहरे को श्रवण देकर ख्रिस्त न केवल चमत्कारी कार्य संपन्न करते बल्कि सभी के लिए घोषणा करते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस तरह आज का सुसमाचार पाठ इस बात की गवाही देता है कि यीशु न केवल उन लोगों को अर्थ प्रदान करते जिनमें इसकी कमी है, बल्कि वे हमें भी अच्छी चीजों से भर देते हैं। बहरा जो फिर सुनने लगा, यीशु उसके लिए सुसमाचार की घोषणा करते हैं। अंधा जो फिर देखने लगा, उसके लिए मुक्ति के महान कार्य को प्रकट करते हैं जो उसके लिए किया गया है। उसी तरह यीशु उन लोगों को भोजन देते हैं जो भूखे हैं। निर्जन प्रदेश अर्थात जब हम आवश्यकता में हैं, तो यीशु जीवन की रोटी हैं। रोटी का चमत्कार हमें दिखाता है कि यीशु के साथ मुलाकात एक तृप्ति का अनुभव है। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। ये संख्या दिखाता है कि ईश्वर का दान सभी के लिए है और हमारे लिए उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। संत पापा ने कहा,
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: प्यारे मित्रों, ख्रिस्त सचमुच मानवता की भूख मिटाते हैं, सत्य और जीवन की हमारी भूख। उनके कार्य हमें सिखाते हैं कि जब बांटा जाता है तो कुछ भी बेकार नहीं जाता। दूसरी ओर जमा करना और बर्बादी एक ही बुराई के दो पहलू हैं। लालच आत्मा की वह बीमारी है जिससे अर्थ खोने लगता है, क्योंकि समृद्धि व्यक्ति को मतवाला बना देता है उस हद तक कि वह उन लोगों को भूल जाता जो भूख से बिलखते और प्यास से रोते हैं, और इसलिए सड़ती हुई चीजों की अमीरी के सामने उन लोगों के फैले हुए हाथ खड़े हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन लोगों के जले हुए घर जिनके पास शांति नहीं है। संत पापा ने दुनिया की वर्तमान स्थिति की याद करते हुए कहा, युद्ध के निर्जन प्रदेश एवं अहंकार का सामना करते हुए हम प्रभु की दया को देखें, जो स्वर्ग की ओर नजर उठाते, धन्यवाद की प्रार्थना करते, रोटी तोड़ते और उन्हें अपने शिष्यों को देते हैं ताकि वे भीड़ को बांट सकें। संत पापा ने कहा, उदारता के इस चमत्कार में हम यीशु के कार्यों की विशेषता को पाते हैं जिनकी पराकाष्ठा अंतिम ब्यारी में है, जब ईश्वर के बेटे ने मानव जाति में हमारे भाई के रूप में अपनी जान दे दी। जब हम यूखरिस्त की कृपा को ग्रहण करते हैं तो आइए हम अपने रोज के कामों में इसकी सुंदरता को दिखाने के लिए खुद को तैयार करें, जिसकी शुरुआत परिवार और दोस्तों के साथ खाने की मेज पर भोजन को आशीष देते हुए होती है। यीशु के साथ छुट्टियां भी भाईचारे की शांति का समय बन सकती है अगर हम जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, हम कुंवारी मरियम हमारी प्यारी माता से प्रार्थना करें कि वे हमें उदारता में बढ़ने में मदद करें ताकि कोई भी अपने दैनिक आहार से वंचित ना रहे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने देश विदेश की विभिन्न घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सेउटा की खतरनाक हालत देखकर परेशान हूँ। स्पेन का स्वायत्त शहर सेउटा, जो अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित है और मोरक्को की सीमा से लगा हुआ है, एक बड़े आप्रवासन संकट का सामना कर रहा है। विगत दिनों हजारों लोगों ने मोरक्को के इस इलाके में घुसने की कोशिश की है, जिससे जगहें भर गई हैं, जिससे स्पेन को और सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। इस संकट एवं समुद्र के रास्ते पार करने की खतरनाक कोशिशों के बीच कम से कम 67 लोगों की जान चली गई। रॉयटर के मुताबिक अधिकांश लोग समुद्र में डूब गए या अफरा तफरी के दौरान कुचल कर मर गए। संत पापा ने कहा, अफ्रीका की माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शांति, स्थिरता और न्याय का हल मिल सके। उन्होंने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि दुनिया में लड़ाइयाँ खत्म हों और झगड़ों का कूटनीतिक हल मिल सके। आइए हम दुश्मनी के शिकार सभी लोगों को याद करें, खासकर सबसे कमजोर और सबसे लाचार लोगों को, बच्चे, बूढ़े और बीमार। प्रभु उन लोगों को आराम दें जो परेशान हैं, और उन लोगों को आशीष प्रदान करें जो सहायता और सांत्वना लाने के काम करते हैं। इसके बाद संत पापा ने सप्ताह के अंत में प्रायश्चित दंड मोचन के अवसर को याद किया और विश्वासियों को इस महान आध्यात्मिक वरदान के लिए धन्यवाद देने और इसे संजोए रखने के लिए आमंत्रित किया। इन दिनों को असीसी के दंडमोचन के लिए समर्पित किया गया है, जो पारंपरिक रूप से असीसी के संत फ्रांसिस से जुड़ा है, जिससे पाप स्वीकार संस्कार एवं पौत्र मिस्सा में भाग लेकर तथा किसी पल्ली या फ्रांसिस्कन चर्च में जाकर विश्वास के धर्मसार प्रभु की विनती, प्रणाम मरियम और संत पापा एवं उनके मतलबों के लिए प्रार्थना करके प्राप्त किया जा सकता है। पोप ने कहा, यह दिन असीसी की माफी के रूप में मनाए जाते हैं। संत फ्रांसिस को यह दंडमोचन 1216 को पोप होनोरिस तृतीय से मिला था, या उन्हें तब मिला था जब उन्होंने पोचुंकुला में प्रार्थना करते हुए यीशु और मरियम को दूतों से घिरा हुआ देखा था। संत पापा ने कहा,
1: Ringraziamo il Signore per tale grande dono.
0: आइए हम इस महान वरदान के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करें और इसे संभाल कर रखें, खासकर असीसी के संत फ्रांसिस की 800वीं वर्षगांठ पर, जिसकी मृत्यु 3 अक्टूबर 1226 को पोचुंकुला में हुई थी। असीसी के क्षमा 1216 से ही हो रही है, जब यीशु ख्रिस्त, कुंवारी मरियम और दूत संत फ्रांसिस के सामने छोटे से प्रार्थनालय में आए थे। यह चैपल फ्रांसिस ने इटली के शहर असीसी में बनवाया था। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Saluto tutti voi romani pellegrini provenienti da vari paesi.
0: और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। असीसी के फ्रायर लुका डे पास्कुआले, जो आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक उम्ब्रियन शहर में होने वाले फ्रांसिस्कन युवा मीटिंग कार्यक्रम के संयोजकों में से एक हैं, ने वाटिकन मीडिया को इन दिनों के प्रोग्राम और मकसद के बारे में बताया, जो दूतों की मरिया महागिरजा घर में संत पापा लियो 14वें के मिसा समारोह के साथ खत्म होगा। गुरुवार 4 अगस्त को असीसी में संत पापा लियो 14वें का प्रेरितिक दौरा युवाओं के लिए खास तौर पर रखी गई 4 दिनों की सभाओं, बहसों और कार्यशालाओं का अंत करेगा। संत पापा उनके सवालों का जवाब देंगे और पौत्र मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहेंगे कि वे एक औसत जिंदगी से समझौता न करें, जैसा उन्होंने एक साल पहले तोरवेरगाता में युवा जुबली के दौरान किया था। फ्रायर लुका ने बताया कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक 18 से 33 साल के हजारों यूरोपियन युवाओं को संत फ्रांसिस के शहर में लाएगा, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह महसूस करना कितना दुखद है कि उन्हें अक्सर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं होती है और इस उम्र में उन्होंने पहले ही सपने देखना बंद कर दिया है। 38 साल के फ्रायर माइनर ने वाटिकन मीडिया को बताया कि संत पापा लियो 14वें जैसे किसी बड़ी हस्ती से मतलब की बातें सुनना कितना जरूरी है, जो युवाओं और जिंदगी की उस भरपूरता के बीच पुल बना सके जिसे वे हमेशा समझ नहीं पाते, और संत फ्रांसिस जैसे पवित्र बेचैनी के मॉडल को देखना कितना मददगार है, जो आज के युवाओं से समकालीन के तौर पर बात कर सकते हैं। उधर बोस्निया और हर्जेगोविना के तीर्थालय में आयोजित युवा समारोह ब्लादी फेस्ट के उद्घाटन के लिए राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक संदेश में संत पापा लियो 14वें ने युवाओं से क्षणिक खुशी के भ्रम में न आने का आग्रह किया। आसान और तुरंत खुशी के वादे आकर्षक होते हैं, लेकिन वे अक्सर कोई गहरी छाप छोड़े बिना फीके पड़ जाते हैं। जो बचता है वह गहरे सवाल, इंसान के दिल में रहने वाली चिंताएं और हमेशा रहने वाली खुशी की चाहत। इन्हीं कमजोरियों से ईश्वर से मिलकर विश्वास का एक असली सफर शुरू हो सकता है। वे हर दिल को शांत करते हैं और हमेशा नई शुरुआत की ताकत देते हैं। यही वह संदेश है जो संत पापा लियो 14वें ने 73 देशों के युवाओं को दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा समारोह के उद्घाटन के लिए मेजुगोरिया में एकत्रित हुए थे। 1989 से शुरू हुआ यह समारोह हर साल यूखरिस्तीय समारोह सेंट जेम्स पल्ली के बाहरी वेदी में होता है। उधर ईरान पर अमेरिका का हमला

यह वह ज्ञापन है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समझौते के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में है, जिसे मध्यस्थ संदर्भित करना चाहते हैं, विशेष रूप से होर्मुज के मुद्दे पर। युद्ध से पहले सभी जहाज स्वतंत्र रूप से पारगमन कर सकते थे, फिर ईरान ने संघर्ष के दौरान इसे बंद कर दिया और नियंत्रण बनाए रखने और टोल एकत्र करने पर जोर दिया। उधर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनवा में सक्रिय इस्लामी हथियारबंद दलों के खिलाफ प्रदर्शन को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती हमले में पुलिस अधिकारियों और आम लोगों समेत कम से कम 14 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार हमलावर ने एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की, लेकिन गेट पर रोके जाने पर उसने बिल्डिंग के पास जमा हुए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने विस्फोटक जैकेट में धमाका कर दिया। मरने वालों में कम से कम 5 पुलिस अधिकारी शामिल थे। राष्ट्रपति आशिफ अल जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। उधर रविवार 2 अगस्त को CBCI बायोएथिक्स फोरम द्वारा कॉन्स्टेंट लीबन्स अकादमी ऑफ हेल्थ साइंसेस मांडर में कैथोलिक बायोएथिक्स प्रसार कार्यशाला को CCBI बायोएथिक्स फोरम के डायरेक्टर फादर चार्ल्स डेविड ने संचालित किया। यह फोरम देश भर के कैथोलिक बायोएथिक्स को बढ़ावा देने और कैथोलिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में हॉस्पिटल एथिक्स कमेटियों की स्थापना को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा था। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कॉन्स्टेंट लीबन्स अकादमी ऑफ हेल्थ साइंसेज के निदेशक फादर सीजो कुनेल ने प्रोफेशनल और क्लिनिकल ट्रेनिंग के साथ साथ नैतिक शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को तैयार करने के महत्व पर जोर दिया जो काबिलियत को दया, ईमानदारी और सुसमाचार के मूल्यों के साथ मिलाते हैं। सत्र में मानव गरिमा, नैतिक फैसले लेने, प्रजनन नैतिकता, जीवन के अंतिम क्षणों में देखभाल, सामाजिक न्याय और कैथोलिक स्वास्थ्य देखभाल के मिशन पर कैथोलिक शिक्षा की जांच की गई। आपसी बहस, चर्चाओं और केस स्टडीज से प्रतिभागियों को असल जिंदगी के स्वास्थ्य देखभाल की स्थितियों में नैतिक सिद्धांतों को लागू करने में मदद मिली, जिसमें खासतौर पर करुणामय एवं मरीज केंद्रित देखभाल पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और आज की बायोएथिकल चुनौतियों पर सवाल उठाए। कई लोगों ने व्यवहारिक केस आधारित तरीके की तारीफ की और अपनी भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल मिनिस्ट्री में मानव गरिमा की रक्षा करने, करुणामय देखभाल देने और नैतिक समझदारी दिखाने के लिए एक नई प्रतिबद्धता दिखाई। नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर फ्लोरिना MMS के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला खत्म हुई और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।

0: लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
1: यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
0: मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि प्रायः गुमनामी और एकाकीपन से परिपूर्ण महानगरों में हमें सुसमाचार प्रचार के नए तरीके मिलें, ताकि स्वस्थ समुदाय के निर्माण हेतु रचनात्मक रास्तों की तलाश कर सकें। आमीन।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है देवदूत प्रार्थना के पूर्व दिया गया पोप लियो 14वें का संदेश, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की एवं सिस्टर अनुग्रह।

0: रविवार को देवदूत प्रार्थना के दौरान पोप लियो 14वें ने रोटी और मछली के चमत्कार पर चिंतन किया और विश्वासों को याद दिलाया कि ख्रिस्त से मुलाकात एक तृप्ति का अनुभव है। वैटिकन स्थित संत पेत्रस महागिरजा घर के प्रांगण में रविवार 2 अगस्त को पोप लियो 14वें ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया। देवदूत प्रार्थना के पूर्व उन्होंने विश्वासियों को संबोधित कर कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: प्रिय भाइयों एवं बहनों, शुभ रविवार।
1: Quando ascoltiamo il Vangelo, sentiamo spesso raccontare dei segni compiuti da Gesù.
0: जब हम सुसमाचार पाठ सुनते हैं तो हम अक्सर यीशु के चमत्कारों को सुनते हैं। वे ऐसे कार्य हैं जो हमारे प्रति उनके विशेष समर्पण को दिखाते हैं, अर्थात उस मुक्ति को जिसको वे दुनिया में लाते हैं। प्रभु को उस रूप में प्रस्तुत करते हैं जो जीवन को अर्थ प्रदान करता और बुराई एवं पाप से मुक्ति दिलाता है। चमत्कारों के गूढ़ अर्थ पर प्रकाश डालते हुए संत पापा ने कहा, अंधे को दृष्टि एवं बहरे को श्रवण देकर ख्रिस्त न केवल चमत्कारी कार्य संपन्न करते बल्कि सभी के लिए घोषणा करते हैं कि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। इस तरह आज का सुसमाचार पाठ इस बात की गवाही देता है कि यीशु न केवल उन लोगों को अर्थ प्रदान करते जिनमें इसकी कमी है, बल्कि वे हमें भी अच्छी चीजों से भर देते हैं। बहरा जो फिर सुनने लगा, यीशु उसके लिए सुसमाचार की घोषणा करते हैं। अंधा जो फिर देखने लगा, उसके लिए मुक्ति के महान कार्य को प्रकट करते हैं जो उसके लिए किया गया है। उसी तरह यीशु उन लोगों को भोजन देते हैं जो भूखे हैं। निर्जन प्रदेश अर्थात जब हम आवश्यकता में हैं, तो यीशु जीवन की रोटी हैं। रोटी का चमत्कार हमें दिखाता है कि यीशु के साथ मुलाकात एक तृप्ति का अनुभव है। सबों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरे भर गए। ये संख्या दिखाता है कि ईश्वर का दान सभी के लिए है और हमारे लिए उनकी कृपा कभी कम नहीं होती। संत पापा ने कहा,
1: Carissimi, Cristo sazia davvero la fame dell'umanità.
0: प्यारे मित्रों, ख्रिस्त सचमुच मानवता की भूख मिटाते हैं, सत्य और जीवन की हमारी भूख। उनके कार्य हमें सिखाते हैं कि जब बांटा जाता है तो कुछ भी बेकार नहीं जाता। दूसरी ओर जमा करना और बर्बादी एक ही बुराई के दो पहलू हैं। लालच आत्मा की वह बीमारी है जिससे अर्थ खोने लगता है, क्योंकि समृद्धि व्यक्ति को मतवाला बना देता है उस हद तक कि वह उन लोगों को भूल जाता जो भूख से बिलखते और प्यास से रोते हैं, और इसलिए सड़ती हुई चीजों की अमीरी के सामने उन लोगों के फैले हुए हाथ खड़े हैं जिनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उन लोगों के जले हुए घर जिनके पास शांति नहीं है। संत पापा ने दुनिया की वर्तमान स्थिति की याद करते हुए कहा, युद्ध के निर्जन प्रदेश एवं अहंकार का सामना करते हुए हम प्रभु की दया को देखें, जो स्वर्ग की ओर नजर उठाते, धन्यवाद की प्रार्थना करते, रोटी तोड़ते और उन्हें अपने शिष्यों को देते हैं ताकि वे भीड़ को बांट सकें। संत पापा ने कहा, उदारता के इस चमत्कार में हम यीशु के कार्यों की विशेषता को पाते हैं जिनकी पराकाष्ठा अंतिम ब्यारी में है, जब ईश्वर के बेटे ने मानव जाति में हमारे भाई के रूप में अपनी जान दे दी। जब हम यूखरिस्त की कृपा को ग्रहण करते हैं तो आइए हम अपने रोज के कामों में इसकी सुंदरता को दिखाने के लिए खुद को तैयार करें, जिसकी शुरुआत परिवार और दोस्तों के साथ खाने की मेज पर भोजन को आशीष देते हुए होती है। यीशु के साथ छुट्टियां भी भाईचारे की शांति का समय बन सकती है अगर हम जरूरतमंद पड़ोसी की मदद करते हैं। तब संत पापा ने माता मरियम से प्रार्थना करने का आह्वान करते हुए कहा, हम कुंवारी मरियम हमारी प्यारी माता से प्रार्थना करें कि वे हमें उदारता में बढ़ने में मदद करें ताकि कोई भी अपने दैनिक आहार से वंचित ना रहे। इतना कहने के बाद संत पापा ने भक्त समुदाय के साथ देवदूत प्रार्थना का पाठ किया तथा सभी को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद दिया।
1: Angelus Domini nunciavit Mariae
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
0: देवदूत प्रार्थना के उपरांत संत पापा ने देश विदेश की विभिन्न घटनाओं पर अपनी चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा,
1: Cari fratelli e sorelle, sigo con preoccupazione l'armante situazione in Ceuta.
0: प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं सेउटा की खतरनाक हालत देखकर परेशान हूँ। स्पेन का स्वायत्त शहर सेउटा, जो अफ्रीका के उत्तरी तट पर स्थित है और मोरक्को की सीमा से लगा हुआ है, एक बड़े आप्रवासन संकट का सामना कर रहा है। विगत दिनों हजारों लोगों ने मोरक्को के इस इलाके में घुसने की कोशिश की है, जिससे जगहें भर गई हैं, जिससे स्पेन को और सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। इस संकट एवं समुद्र के रास्ते पार करने की खतरनाक कोशिशों के बीच कम से कम 67 लोगों की जान चली गई। रॉयटर के मुताबिक अधिकांश लोग समुद्र में डूब गए या अफरा तफरी के दौरान कुचल कर मर गए। संत पापा ने कहा, अफ्रीका की माता मरियम की मध्यस्थता द्वारा मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि शांति, स्थिरता और न्याय का हल मिल सके। उन्होंने विश्वासियों का आह्वान करते हुए कहा, आइए हम शांति के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि दुनिया में लड़ाइयाँ खत्म हों और झगड़ों का कूटनीतिक हल मिल सके। आइए हम दुश्मनी के शिकार सभी लोगों को याद करें, खासकर सबसे कमजोर और सबसे लाचार लोगों को, बच्चे, बूढ़े और बीमार। प्रभु उन लोगों को आराम दें जो परेशान हैं, और उन लोगों को आशीष प्रदान करें जो सहायता और सांत्वना लाने के काम करते हैं। इसके बाद संत पापा ने सप्ताह के अंत में प्रायश्चित दंड मोचन के अवसर को याद किया और विश्वासियों को इस महान आध्यात्मिक वरदान के लिए धन्यवाद देने और इसे संजोए रखने के लिए आमंत्रित किया। इन दिनों को असीसी के दंड मोचन के लिए समर्पित किया गया है, जो पारंपरिक रूप से असीसी के संत फ्रांसिस से जुड़ा है, जिसे पाप स्वीकार संस्कार एवं पौत्र मिस्सा में भाग लेकर तथा किसी पल्ली या फ्रांसिस्कन चर्च में जाकर विश्वास के धर्मसार प्रभु की विनती, प्रणाम मरियम और संत पापा एवं उनके मतलबों के लिए प्रार्थना करके प्राप्त किया जा सकता है। पोप ने कहा, ये दिन असीसी की माफी के रूप में मनाए जाते हैं। संत फ्रांसिस को यह दंड मोचन 1216 को पोप होनोरिस तृतीय से मिला था। यह उन्हें तब मिला था जब उन्होंने पोचुंकुला में प्रार्थना करते हुए यीशु और मरियम को दूतों से घिरा हुआ देखा था। संत पापा ने कहा,
1: Ringraziamo il Signore per tale grande dono.
0: आइए हम इस महान वरदान के लिए प्रभु का शुक्रिया अदा करें और इसे संभाल कर रखें, खासकर असीसी के संत फ्रांसिस की 800वीं वर्षगांठ पर, जिसकी मृत्यु 3 अक्टूबर 1226 को पोचुंकुला में हुई थी। असीसी की क्षमा 1216 से ही हो रही है, जब यीशु ख्रिस्त, कुंवारी मरियम और दूत संत फ्रांसिस के सामने छोटे से प्रार्थनालय में आए थे। यह चैपल फ्रांसिस ने इटली के शहर असीसी में बनवाया था। तत्पश्चात संत पापा ने रोम तथा विभिन्न देशों से आए सभी तीर्थयात्रियों का अभिवादन किया।
1: Saluto tutti voi romani pellegrini provenienti da vari paesi.
0: और अंत में उन्होंने सभी को शुभ रविवार की मंगल कामनाएं अर्पित की।
1: A tutti auguro una buona domenica.

आप वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। असीसी के फ्रायर लुका डे पास्कुआले, जो आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक उम्ब्रियन शहर में होने वाले फ्रांसिस्कन युवा मीटिंग कार्यक्रम के संयोजकों में से एक हैं, ने वाटिकन मीडिया को इन दिनों के प्रोग्राम और मकसद के बारे में बताया, जो दूतों की मरिया महागिरजा घर में संत पापा लियो 14वें के मिसा समारोह के साथ खत्म होगा। गुरुवार 4 अगस्त को असीसी में संत पापा लियो 14वें का प्रेरितिक दौरा युवाओं के लिए खास तौर पर रखी गई 4 दिनों की सभाओं, बहसों और कार्यशालाओं का अंत करेगा। संत पापा उनके सवालों का जवाब देंगे और पौत्र मिसा समारोह की अध्यक्षता करेंगे और उनसे कहेंगे कि वे एक औसत जिंदगी से समझौता न करें, जैसा उन्होंने एक साल पहले तोरवेरगाता में युवा जुबली के दौरान किया था। फ्रायर लुका ने बताया कि यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो आज 3 अगस्त से 6 अगस्त तक 18 से 33 साल के हजारों यूरोपियन युवाओं को संत फ्रांसिस के शहर में लाएगा, और वे अच्छी तरह जानते हैं कि यह महसूस करना कितना दुखद है कि उन्हें अक्सर किसी चीज की कोई इच्छा नहीं होती है और इस उम्र में उन्होंने पहले ही सपने देखना बंद कर दिया है। 38 साल के फ्रायर माइनर ने वाटिकन मीडिया को बताया कि संत पापा लियो 14वें जैसे किसी बड़ी हस्ती से मतलब की बातें सुनना कितना जरूरी है, जो युवाओं और जिंदगी की उस भरपूरता के बीच पुल बना सके जिसे वे हमेशा समझ नहीं पाते, और संत फ्रांसिस जैसे पवित्र बेचैनी के मॉडल को देखना कितना मददगार है, जो आज के युवाओं से समकालीन के तौर पर बात कर सकते हैं। उधर बोस्निया और हर्जेगोविना के तीर्थालय में आयोजित युवा समारोह ब्लादी फेस्ट के उद्घाटन के लिए राज्य सचिव कार्डिनल पियत्रो पारोलिन द्वारा हस्ताक्षर किए गए एक संदेश में संत पापा लियो 14वें ने युवाओं से क्षणिक खुशी के भ्रम में न आने का आग्रह किया। आसान और तुरंत खुशी के वादे आकर्षक होते हैं, लेकिन वे अक्सर कोई गहरी छाप छोड़े बिना फीके पड़ जाते हैं। जो बचता है वह गहरे सवाल, इंसान के दिल में रहने वाली चिंताएं और हमेशा रहने वाली खुशी की चाहत। इन्हीं कमजोरियों से ईश्वर से मिलकर विश्वास का एक असली सफर शुरू हो सकता है। वे हर दिल को शांत करते हैं और हमेशा नई शुरुआत की ताकत देते हैं। यही वह संदेश है जो संत पापा लियो 14वें ने 73 देशों के युवाओं को दिया, जो अंतर्राष्ट्रीय युवा समारोह के उद्घाटन के लिए मेजुगोरिया में एकत्रित हुए थे। 1989 से शुरू हुआ यह समारोह हर साल यूखरिस्तीय समारोह सन जेम्स पल्ली के बाहरी वेदी में होता है। उधर ईरान पर अमेरिका का हमला, जिसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला बताया गया था, होने वाला माना जा रहा था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने खाड़ी देशों सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और कतर के कहने पर इसे वापस ले लिया, जिन्होंने बातचीत से हल निकालने की बात कही थी। पार्टियों के बीच बातचीत आज फिर से शुरू होगी और सबसे पहले हुर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने और फिर देश के परमाणु निरस्त्रीकरण के मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वाशिंगटन और तेहरान 17 जून को एक रूपरेखा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह वह ज्ञापन है जिसका उद्देश्य एक निश्चित समझौते के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में है, जिसे मध्यस्थ संदर्भित करना चाहते हैं, विशेष रूप से होर्मुज के मुद्दे पर। युद्ध से पहले सभी जहाज स्वतंत्र रूप से पारगमन कर सकते थे, फिर ईरान ने संघर्ष के दौरान इसे बंद कर दिया और नियंत्रण बनाए रखने और टोल एकत्र करने पर जोर दिया। उधर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनवा में सक्रिय इस्लामी हथियारबंद दलों के खिलाफ प्रदर्शन को निशाना बनाकर किए गए एक आत्मघाती हमले में पुलिस अधिकारियों और आम लोगों समेत कम से कम 14 लोग मारे गए और 20 से ज्यादा घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार हमलावर ने एक पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश की, लेकिन गेट पर रोके जाने पर उसने बिल्डिंग के पास जमा हुए प्रदर्शनकारियों के बीच अपने विस्फोटक जैकेट में धमाका कर दिया। मरने वालों में कम से कम 5 पुलिस अधिकारी शामिल थे।
राष्ट्रपति आशिफ अल जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए देश की प्रतिबद्धता को दोहराया। उधर रविवार 2 अगस्त को CBCI बायो एथिक्स फोरम द्वारा कॉन्स्टेंट लीबन्स अकादमी ऑफ हेल्थ साइंसेस मांडर में कैथलिक बायो एथिक्स प्रसार कार्यशाला को CCBI बायो एथिक्स फोरम के डायरेक्टर फादर चार्ल्स डेविड ने संचालित किया। यह फोरम देश भर के कैथलिक बायो एथिक्स को बढ़ावा देने और कैथलिक स्वास्थ्य देखभाल संस्थानों में हॉस्पिटल एथिक्स कमेटियों की स्थापना को बढ़ावा देने की पहल का हिस्सा था। प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए कॉन्स्टेंट लीबन्स अकादमी ऑफ हेल्थ साइंसेज के निदेशक फादर सीजो कुनेल ने प्रोफेशनल और क्लिनिकल ट्रेनिंग के साथ साथ नैतिक शिक्षा की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने ऐसे स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ताओं को तैयार करने के महत्व पर जोर दिया जो काबिलियत को दया, ईमानदारी और सुसमाचार के मूल्यों के साथ मिलाते हैं। सत्र में मानव गरिमा, नैतिक फैसले लेने, प्रजनन नैतिकता, जीवन के अंतिम क्षणों में देखभाल, सामाजिक न्याय और कैथलिक स्वास्थ्य देखभाल के मिशन पर कैथलिक शिक्षा की जांच की गई। आपसी बहस, चर्चाओं और केस स्टडीज से प्रतिभागियों को असल जिंदगी के स्वास्थ्य देखभाल की स्थितियों में नैतिक सिद्धांतों को लागू करने में मदद मिली, जिसमें खासतौर पर करुणामय एवं मरीज केंद्रित देखभाल पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों ने चर्चाओं में सक्रिय रूप से भाग लिया और आज की बायोएथिकल चुनौतियों पर सवाल उठाए। कई लोगों ने व्यवहारिक केस आधारित तरीके की तारीफ की और अपनी भविष्य की स्वास्थ्य देखभाल मिनिस्ट्री में मानव गरिमा की रक्षा करने, करुणामय देखभाल देने और नैतिक समझदारी दिखाने के लिए एक नई प्रतिबद्धता दिखाई। नर्सिंग स्कूल की प्रिंसिपल सिस्टर फ्लोरिना MMS के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यशाला खत्म हुई और इसी के साथ वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।